पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी अपना बिरस समारिया। होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन दे सुखाली।

गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन पाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे सा

साचे नाम की तल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकर आखण पाहे, वड्डा न होवे काट न जाए।

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन केवट भाग वडेरे, जन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृपता सहै, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंतो।

लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया सिर सिर रिजक संबाही ठाकुर काही मन पौ करिया ऊडे ऊडया वैसै कोसा तिस पाछे पाछै बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सुधान ठाकुर करतल करिया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत न पार है वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम।

सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत बेचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे जोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा।

तू सब नींद आया, जिसनों कृपा करहे तन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुझे आप बिछोड़िया आप

कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा करता।

कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पहन पहन तो तेती तुमरा लखा न जाई पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा।

पुरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तन कमो हरे हो

सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दो तां गावो हरि के राग मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया।

सिंहासन में चमकौर वालू चले गए गुरु साहब दे महल भाई मनी सिंह जी दे नाल दिल्ली वालू चले पा गए माता जी अते दो छोटे साहब जादे जिन्ना मुखी सिंह दी देख रेख हेठ सन तन ओ शहीद हो गए कई बिछड़ गए माता जी अते दो छोटे साहब जादे जिखरा पेंडा तय करदे होए जंगलों विच तुरे जांदे हन पैरां विच कंडे बज बज के खून निकल आया जिद्दां दी लंघदे ने धरती दी छाती उत्ते मेहंदी लगदी जा रही है बच्चे पुछ रहे ने माता जी साडी बेबे किधर गई है साडे पिता जी किधर गए ने वड्डे वीर भी नजर नहीं आंदे आपां घर नूं कदों पजावांगे साहिबजादे माता जी तो सवाल इहो पुछदे ने।

दरवाजे एक मनुखी आकार नजर आया। माता जी ने आवाज मारी, जान वाला रुक गया। जब माता जी कोल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे काफले साडे घर का गंगू राम रसोईया है, जो बड़िया तो घर की रसोई करता आ रहा है। माता जी अते साहिबजादे की ए हालत देख के गंगू राम पिघल गया। कहने लगा, माता जी मेरा पिंड खेड़ी इतो नेड़े ही है, मेरे घर चलो, जब हालात सुखावे हो जाएंगे मैं गुरु साहब की भाल करके आप जी उन्होंने तक पहुँचा देंगा। गंगू माता जी अते साहिबजादे नु लेके अपने पिंड वालू हो तुरिया। पावन बाणी का फरमान है, कबहू जेड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए प्याले, लोभी जेड़ा थिरना रहत है, चारे कुंडा पाले। गंगू का मन बदल गया, माया नागली ने डंग मारिया, उडारिया मारदा मन आखिर गर्कन उकन नु आ गया। गंगू का मन फिर गंगा के पानी वांग निर्मल न रह के एक गंदे छप्पड़ की तरह बन गया। लोभ लालच ने मत मार ली। सोचन लगा, माता जी को एक माया की खुर्जी है, जे चुस्ती करा तो आम आदमी हजम कर लवा ते सरकार तो काफी इनाम भी मिल जाएगा। दोहा हाथों में लड्डू ने तेरे इना पुन्ना पापा ने चक्कर विच ना पाए। ये सोच के गंगू ने तन की खुर्जी किते होर लगा दी, अद्धी राती चोर चोर का रौला पाना शुरू कर दिता। जो माता जी ने कहा, गंगिया मैं तो जागदी पई हां, इत्थे आया ही कोई नहीं, तां तू रख लै, असी की करना है, पर ए चतराइयां तैनू सौंपदियां नहीं। ए सुन के गंगू उच्ची उच्ची रौला पाउन लगा, मां जो सरकार दे बागे नू घर लैके पनाह दिंदा है, तुसीं तां जानदे ही हो उसका की हशर हुंदा है। मैं तो आप अपनी मौत से हैर बैठा हाँ, जेकर सरकार नू इस गल दा पता लग गया तां मैनू कोले दी स्पीड देगी। ए रौला पाउंदा होया गंगू पापी शहर मरिंडे पुलिस कोल पहुंच गया। शहर मरिंडे पहुंच गया कोई पंत मुका के, जानी खाते मानी खानू क्या सुना के, दो पुत्र गुरु गोबिंद दे मैं आया बाके, एक माता दशमेश जी तुसी फालो जाके। ए गल सुन के पुलिस दस पाही जानी खाते मानी खाने माता जी अते साहिबजादे नु हाथ कड़ियां लगा दितियां अते शहर मरिंडे वालू लै तुरे। वजीर खां दी कचहरी लगी हुई है, साहिबजादे नु कचहरी विच पेश कीता गया। ज़ाहिर हुकूमत ने साहिबजादे नु अनेका तरह दे लालच अते डरावे दिते, राजभाग दा लालच, हूरां दे डोलियां दा लालच, पर बच्चे ने इन्हां सारे लालचां ते डरावियां नु अपनी जुत्ती दी नोक ते है।

0: गुरु खालसा जी इतिहास तरण करवा रहे सन। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालियां दी लाई हुई फुलवाड़ी अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दियां विद्यार्थियों का ढाडी जथा। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालियां दे अनिल सेवक संत तेजा सिंह जी MA LLB पंजाब AM हावर्ड यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन की नींह रखी जो हिमाचल प्रदेश विच है। इस स्थान नूं गुरुद्वारा बड़ू साहिब दे नाम नाल जानिया जांदा है। गुरुद्वारा बड़ू साहिब जो है चंडीगढ़ तो 135 किलोमीटर ते सोलन तो 65 किलोमीटर दे फासले ते है। इस इंस्टीट्यूट नूं मैनेज करन वास्ते संत तेजा सिंह जी ने कलगी ट्रस्ट सेटअप किया जिसकी सरप्रस्ती हेठ इस वक्त यतीम खाना विधवा आश्रम वेद आश्रम गुरमत विद्यालय संगीत विद्यालय फ्री हस्पताल अते अकाल अकैडमी इंग्लिश मीडियम 10+2 पब्लिक स्कूल चल रहे ने। संगतां दी पुरजोर मंग ते अकाल अकैडमी दियां 21 ब्रांचेस होर खोलियां जा चुकियां ने। कुल 22 स्कूल पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश अते हिमाचल प्रदेश दियां वक वक थावां ते खोले जा चुके ने। इह स्कूल खास करके पिंडां विच खोले गए ने ता जो पिंडा दे बच्चियां नूं चंगी तो चंगी विद्या दे के अज दा जो साइंस दा युग है इस विच अगे लांदा जा सके। बच्चे अकाल अकैडमी दे विचों पढ़ के डॉक्टर बन इंजीनियर बन ट्रेडर बन साइंटिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट बन जिथे भी किते जान अपना कारोबार करन दे नाल नाल सारी दुनिया दे विच गुरु नानक देव जी महाराज दा चलाया सच दा मार्ग दस के सारी लोकाई दे सरदे बल दे हिरदियां नूं ठंड बख्शण। इस संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालियां दा आशा सी ते उस आशे नूं मुख रखदियां होया अकाल अकैडमियां खोलियां गईयां ने। गुरु खालसा जी अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दियां विद्यार्थियों दा ढाडी जथा आप संगतां दी सेवा करदा होया आप जी तों आग्या चाहुंदा है। इन्नी सेवा प्रवान करो भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शो बुलाओ फते ते सारे गज गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा।
1: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ।
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

काम, क्रोध, मोह, लोभ ते हंकार, ये पंज विशे विकार आम मनुख नूं मनुखता तो दूर लै जांदे ने ते मनुख दुखां दी दलदल विच धस जांदा है। इन्हां तो बचण लई शायर इंज अर्ज करदा है।

सारी संगत गज के गुरु स्तोत्र विच बोलो, फिर अरदास विच जुड़ो, फिर हुक्मनामे सुनांगे, फिर गुरु साहब जी जानगे, आपां बाज चलांगे। पहला जान दी किसे ने खेचला नहीं करनी। जिथों जिथों आए हो ट्रालियां लियाओ, बस चढ़ के संगत नूं होर व्हीकल लैके, बस चढ़ के संगत नूं समागम विच लैके आओ। बहुत वड्डा पुन है, जोड़न वर्गा पुन नहीं, ते तोड़न वर्गा पाप। गज के बोलो सा।

कर्म धर्म किस उपज ना आयो न उपजी निर्मल करनी छाड़ सियानप संजम नानक लागो गुर की करनी देव गंधारी पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे है सुख सहज आनंदा काटे जम के फाहा रहाऊ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पह आहा जिन्हें प्राप्त एहो निधाना जिनका कर्म लिखा हा से बड़ भागी से पतवंते से पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते न

की आवे। नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ लावे। देव गंधारी पंजवा, चंचल सुपने ही उरजायो। इतनी ना बूझे कबहू चलना, विकल भयो संग मायो रहाओ। कुसुम रंग संग रस रचिया, विखिया एक उपायो। लोभ सुने मन सुख कर मान, देग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावे है ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए पुर धारो देव गंधारी महला पंजवा।

जब चितवाओ तब तुहारी, उन समाहार मेरा मन साधारी, सुन गावो गुरबचनारी, बल बल जाऊं साध दरसारी, मन में राखो एक असारी, नानक प्रभ मेरे करने हारी, देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ यह मनोरथ मेरा, कृपा निदान दयाल मोहे दीजै, कर संतन का चेरा रहाव, प्रातः काल लागू जन चरनी, निस बासर दर्स पावो, तन मन अर्प करूं जन सेवा, रसना हर गुण गाव, सास सास सिमरो प्रभ अपना, संत संग नित रहिए, एक आधार नाम तन मोरा, आनंद नानक एहो लही है, राग देव गंधारी महला पंच।

काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई। रवियारे रविया सर्वथान यो बैसंतर कास्त मजार। बिन संजम नहीं कार्य सार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार। मिल संगत ताज अभमान,

मद माया कै भयो बावरू हर जस नह उच्चरे कर पर पंच जगत को डहकै अपनो उधर भरै स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सर देव गंधारी महला नवा सब किश जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप हर फुन ग्रह की नार रहाव तन ते प्राण हो जब न्यारे तीर्थ प्रेत पकार आद करी को नह राखै घर ते देत निकार मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जाते होत उधार देव गंधारी महला नौवा जगत मैं झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत रहाओ मेरो मेरो सब कहते हैं हित स्यों बांधियो चीत अंत काल संगी नह को यह अचरज है रीत मन मूरख अजहू नह समझत सिख दहार्यो नीत नानक भौजल पार पर

इन मह राहु रंक कहो करी राहु रंक कर डारी रीते परे परे सख नावे यह ताकू व्यवहारी।

अपने आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज, गुरु गरीब नवाज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आस्था महला चौथा।

आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने आडंबर बने

भोग शब्द संबंधी नूर अरसों पुरुषों तुद लिखे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी पटी सज्जन सचा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठे सोई।

मुख अनदिन उसत हो गए। मन मुख पर मैं सहसा हो गए, अंतर चिंता नींद न सो गए। ज्ञानी जागहें सबह सुपाए।

तू सदा सलामत निरंकार भरी हाथ पैर तन दे पानी तो तै उतर सुखे मूत पलीती कपड़ होए जे साबुन लई आत होए परिय मतबा पांगा संग हो तो नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना निकल जा आपे बीजा पी खा नानक हुक्मी आव हो जा तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे दिल का मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगात तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ्य आस बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन जाओ कवन सुवेला भगत कवन कवन सित कवन वार कवन से रुति महा कवन जित वाकार वेल न पाइया पंडती जे होगा लेख पुराण भगत न पायो कादियां जे लिखण लेख पुराण सित वार न जोगी जाने रुतम

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड अंतन शब्दी करण में अंतु अंतन करण देण में अंतु अंतन विखुण सुन में अंतु अंतन जप क्या मन मंतु अंतन जप चिताकार अंतन जप पारावार अंत कारण के बिललाहे जाके अंत न पाए जाहे ही अंत न जाने कोई बहुता कहिया बहुता हो मुदा साहेब ऊंचा खाऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ ए बड़े ऊंचा हो गए कोई दसूचे को जाने सोए जे बड़े आप जाने आप नानक नदरी कर मिला बहुता कर्म लिखा न जाई वड्डा दाता तिल न समाई केते मंगह जुड़ पार केत्या गणत नहीं विचार केते गपत टाइम बेकार केते लै लै मुकर पाई केते मूर्ख ताई पाई केत्या दुख भूख सद मार हे पे दात तेरी दातार बंद कलाशी पाणे होए हो राख न सकै कोई जे को खाए तो आखण पाए हो जाने जितियां मोह खाए आपे जाने अपे दे आखे से पे कई कई जिसनो बख्शे सब साला नानक पातशाही पाठ जाओ अमुल गुण मुल व्यापार मुल व्यापारी अमुल भंडार मुला वह मुल ल जाई अमुल पाई मुला समाई अमुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल प्रवान मुल बख्शीस मुल निशान मुल कर्म मुल प्रमाण अमुलो मुल अख न जाई आख आख रहे लिबलाई अख वेद पाठ पुराण अख पढ़े करे बख्यान आख ब्रह्मे अख इंद अख गोपी तय गोविंद अख ईश्वर अख सद अख गीते गीते बुद्ध अख दानवे अख देव अख सुर नारी मुन जन सेव।

प्रीत है, धर्मानंद दान है, त्रिपुरगा सर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजर्म है, वर्ण है, भूत है, पर्ण है, गांजा है, बांझ है, जूझ है, चांद है, अमीक है, रफीक है, दंद है, बंद है, निर्भूज है, सूझ है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, जह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निर्सलीक है, निर्लंब है, संभ है, अगम है, जम है, भूत है।

देव कुमार महान इंद्रानिंद्र बालन बाल रंक अनंक कालन काल अनुभूत अंग गुण गणगार मन गण प्रणाम निर्भय काम आतदुत प्रचंड मित गति अखंड अलिश कर्म अदृश धर्म सर्व प्रणाड्य अन दंड बढ़े अंजाजरी छंद तल प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उधार्य पारे हरियंग करियंग नामे कामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वरती चतर चक्र भरती चतर चक्र बाले चतर चक्र काले चतर चक्र बासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न भरंग न पितर न कर्मंग न काहे जन्म न जाये न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृषय भगवती शांत प्रसाद कथते के आशज देशा के अबज बेसा के अगन कर्म के अबन भरम के अबज लोक के आदत शोक के अवधूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजंग प्रवाय के धर्मंग तुझाए के अशोक वर्ण के सर्व वर्ण के जगत रतियाँ के शत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुपन हो पाए के आदो देव के आप भेव

के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गावने के सर्वत्र भावने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम

चतुर्दश कंता कालपाय ब्रह्मा बपतरा कालपाय सबजु अवतरा कालपाय कर विष्णु पर गासा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब की ओम वेदराज ब्रह्मा ज्योति ओम जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है दाय हमारा जवन काल जोगी सब की ओम वेदराज ब्रह्मा ज्योति ओम जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है दाय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दयांत जशन बजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलम भल कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत जिटी दे गुंजर सूला सब पर कृपा दृढ़ कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गड़गड़ के बड़बड़ की जाने जब करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख कर तो कब हूँ

इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीर आया, तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हार मन वसया गुरु लिखया पाया, कहे नान के शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर से उन चित लाया। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम जो धरी, हर बिन वरण देखो कोई, हर बिन वरण देखो कोई नदरी हर निहालया। हे वे संसार तुम देख दे हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझाया।

0: કેળબોદી રંગીલી તરતી દેવસની
1: ગૌરી સુખમની મહલા પંજવા એક ઓંકાર સદગુર પ્રસાદ શ્લોક આદિ ગુરે નમઃ જુગાદિ ગુરે નમઃ સતગુરે નમઃ શ્રી ગુરુદેવે નમઃ અસ્પદે સિમરો સિમર સિમર સુખ પાવો કલ કલેશ તન મહ મિટાવો સિમરો જાસ વિશ્વંભર એક નામ જપ અગંત અનેક વેદ પુરાણ સિમરત સુધાકર કિને રામ નામ એકાખર કિનકા એક જિસ જીવ સાવે તાંકી મહિમા ગની ન આવે કંખી એક દર્શ તુહારો નાનકુન સંગ મોહે ઉધારો સુખ મની સુખ અમૃત પ્રભ નામ ભક્ત જના કા મન વિશ્રામ રહાઓ પ્રભ કે સિમરન ગર્ભ ન બસે પ્રભ કે સિમરન દૂર જમ નસે પ્રભ કે સિમરન કાલ પર હરે પ્રભ કે સિમરન દુશ્મન તરે પ્રભ સિમરત કચ્છ વિઘ્ન ન લાગે પ્રભ કે સિમરન અંજન જાગે પ્રભ કે સિમરન ભવ ના વ્યાપે પ્રભ કે સિમરન દુઃખ ના સંતાપે પ્રભ કા સિમરન સાધ કે સંગ સર્વન ધન નાન ઘર રંગ પ્રભ કે સિમરન રિદ્ધ સિદ્ધ ન નિદ્ધ પ્રભ કે સિમરન જ્ઞાન ધ્યાન તત્ બુદ્ધ પ્રભ કે સિમરન જપ તપ પૂજા પ્રભ કે સિમરન બિનસે દૂજા પ્રભ કે સિમરન તીર્થ ઇસ્નાની પ્રભ કે સિમરન દરગહ માની પ્રભ કે સિમરન હોય સો ભલા પ્રભ કે સિમરન સો ફલ ફલા से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताका लागो पाए प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा प्रभ का सिमरन उधरे मूचा प्रभ का सिमरन कृष्णा बुझै प्रभ का सिमरन सब किछ सुझै प्रभ का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ का सिमरन पूर्ण आशा प्रभ का सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माहे समाए प्रभ जी बसह साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से धन बनते प्रभ को सिमरह से पत बनते प्रभ को सिमरह से जन प्रवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहता दे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन के मंगर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तन सब बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तन अंध कनेरे प्रभ को सिमरह बसे हर मेरे संत कृपाते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कभू न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन नेचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिन को प्रभ मया नानक जन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदि जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाभयान दूत जम दले तह केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माह उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं करे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावहु सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप्त होए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जप्त निस्तरे अनक माया रंग तिख न बुझावे हर का नाम जप्त आभावे जेह मार्ग एह जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई है झूठत नहीं कोट लख वाही नाम जप्त तह पार पर आही अनक विघ्न जह आय संघार हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइय साध कै संग। जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जह पैंडै महा अंधक भारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा कोना सुजानू, हर का नाम तह नाल पहचानू। जह महा भयान तप बहु काम, तह हर के नाम के तुम ऊपर शाम। जहां त्रखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत जन रात, हर हर औकद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंगर ते रंग एक, नानक जन कै बिरत विवेक। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगत नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते करे। पार जात इह हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम संत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाहि हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत विख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म करिया, सगल त्याग मन मध्य करिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व हैवर भूम दान। न्योली कर्म कर बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ कि होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत।

कोट अपाव दरगह नहीं सिज है। झूठ सनाही ऊह पयाल मोहे ब्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जमडान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान। हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ देखो मांगे साध बिना की सेवा लागे। देखो अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे। देखो अपनी शोभा लोरै साध संग एह होमै छोरै। देखो जन्म मरण ते डरै साध बिना की सरनी परै। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जा का मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना देखै सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन समृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्धन कौ धन तेरो नाओ मिठावे कौ नाव तेरा थाओ। निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल घटा को देहो दान। करन करावन हर स्वामी सगल घटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते। तुमरी औसत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोई। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मन हरिया। सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक दे घट वसै हर नाम। श्लोक निर्गुण यार इन्हनिया सो प्रभ सदा समाल। जिनकी आतिस चीत रख नानक निधि नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूध। बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन। एह निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श लेहो तव नानक सीझै। जेह प्रसाद धर ऊपर सुख वसह सुत भ्रात मीत बनता संग हसह। जेह प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदायी पवन पाप अमुला। जेह प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा। दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संगरचना। ऐसे दोख मूर अंध व्यापे नानक काड लेहो प्रभ आपे। आद अंत जोरा खनहार तिस च्यों प्रीत न करे गवार। जहाँ की सेवा नव निंद पावै ता से मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जान तूरे। जा की टहल पावे दरगह मान तिसह बसारे मुग्ध पजान। सदा सदा एह भूलनहार नानक राखनहार अपार। रतन त्याग कौटी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारे धोए गर्द विपरीत भस्म संग होए। अंधकूप में पत्र विकराल नानक काट ले हो तब दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाही कछ करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ स्वान। अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह। जाकर अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेहो ओढ़ निभावै। कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कहिया तव समझै भोरा। कहाँ दिसन पद गावै गुंग जतन करै तव पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उस गवन। करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा करै। संग सहाय सुआवे न चीत जो बैराई ता सो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर वसै अंध केल माया रंग रसै। दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत काल न आवै मूल।

काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुए नानक कहो नसी जय बिन नावे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण विखोट गवावे एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर से नाही चारा ताको की जय सद नमस्कार जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहो अपनी देरास खात पीत बरत अनंद उलास अपनी अमान कच बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होए जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रख है प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पांत माया के हित सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओ बिनसै ओह मन पछतावे जो दिसै सो चल नहार लप रहो तह अंध अंधार बटाओ स्यों जो लावे नेह ताको हासन आवे केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोगन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्द कोहर है मिथ्या नेत्र पेखक पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार कौताव है मिथ्या मन पर लोग लभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बुझे मिथ्या सब भये सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साज बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध दिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाये मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निरात नाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख गंड लावत जन नहार प्रभु परबीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिस कै अंतर बसै निरंकार जिसकी सीख करै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप करत ने बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान तनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणांग ते कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पै सिमरहु तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यावन जोग।
जेह प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसे त्याग कत अगर लुभावै जेह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय जेह प्रसाद सब को मन मुखता को जस रसन बखानै जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सेती घर जावै जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिर ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जेह प्रसाद आभूषण पहरे जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जेह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू न बिसारी जेह प्रसाद बाग मिल धना रास त्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुनह कर्णनाद जय प्रसाद पेख बिस्माद जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मन हो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे जय

प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्वनिधान प्रभ तेरी मया, आपहु कछु न किन्हु लया, जित जित लावहु तित लगै हर नाथ, नानक किनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए, सुन मिता नानक बिनवंता, साध बिना की अचरज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली पोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब नीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजा सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान उचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कुलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध हृद वसै, नान कुदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भय हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जानहि, जेता सुनहि तेता बखियाने, साध की उपमा त्यों गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक दिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसुदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान,
ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक दिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी का हो सो फला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रवाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी।

तैसा अमृत तैसी दिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई पुन होग, पसरे आप होए अनंत तरंग।

जीवे अमर पहे सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्मरस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास सुमारे, नानक हुए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं को, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्परी। करण करावन करना जोग जो तिस भावै सोई होग, खिन महथा उथा पनहारा अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे तार अधर रहावै हुक्मे उपजा हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै तां पात्र त्रावै, प्रभ भावै बिन सास तिराखै प्रभ भावै तां हर गुण भाखै, प्रभ भावै तां पत ते उधारै आप करै आपन विचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी केलै बिगसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर नावै, कहो मनुख ते क्या होयावै जो तिस भावै सोई करावै, इस कै हाथ होए तां सब किछले जो तिस भावै सोई करे, अनजानत बिथिया मह रचै जे जानत आपन आप बचै, परमे भूला दह दस्तावै निमख माही चार कुंठ फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले, थिन महनीच कीट को राज पार ब्रह्म ग्रीव निवाज, जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दुष प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीस ता का लेखा न गणै जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ कर्म करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फन थियो, कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हर्ष रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत्य करै बहुपात कबहू सोय रहै दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होए बह बड राजा कबहू भेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त में आवै कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रवराखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मौन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग हो जिया अनक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय, कबहू साध संगत एह पावै उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नामृत एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान, जो जन मैं जो बनवंत सो होवत बिस्ता का जंत, आप स्काओ कर्म बंत कहावै जन्म मरे बहु जोन प्रमावै, धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै नानकी हां मुक्त आगै सुख पावै, धनवंता होय कर गरबावै तृण समान कछ संग न जावै,
ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਰ ਭੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਜਾਏ ਭਸਮੰਤ। ਕਿਸੈ ਨ ਬਧੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉਂ ਧਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਿੰਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਉ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕ ਨ ਆਵੈ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਉ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਹ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਤਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਅਨਕ ਭੋਗ ਦਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੁ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, ਆਪ ਹੈ ਏਕ ਆਪ ਹੈ ਅਨੇਕ। ਮਰੈ ਨਾ ਨਿਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਆਪ ਕੀਨੂ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ। ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕੌਤੁਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਆਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖਾਣੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰ ਨਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਸਤਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ। ਸੰਤ ਕੇ ਹਥੇ ਕਉ ਰੱਖੈ ਨ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜੋਨ ਲਵੈ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚ ਆਏ। ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਧੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਅਤਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਾਰਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀਨ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮੈਂ ਦੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਾਨ ਲਾਗੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ।
संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख के तरह, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावे तां ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी कतै काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते सोथा, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ ना है, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी पावन न राखन हार, नानक संत भावे तां ले उबार, संत का दुखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ही धन नहीं त्रापे, संत का दुखी छोटा अकेला, ज्यों बुआड़ तल खेत माहें दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमित्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न त्रिष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिट कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तद करो दिन रात, तिसह त्याग हो सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोतिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी।

नानक दुख भरन पौ जाए अष्टपदी मानक की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिए रह अघाए बहुरना तृष्णा लागे आए मारे राख एको आप मानक कह कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न न लागे कोई उस्तुत मन में कर निरंकार करमन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से धनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान हो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत की ओह सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक किन्हें निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सुझ है जिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अनदिन कीर्तन केवल बख्यान गृत मह सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिय जम की पासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह न लागह दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संस होला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजया गुर प्रसाद तत सब बुझया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असूल न किछ जन्मे न किछ मरे आपन चलत आप ही करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किछ खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो भावंत सगल संसार उदरतन।

सोई लागै। जिसनु कृपा करह वड भागै, नाम जपत पावह विश्राम। नानक तिन पुरख कौ उत्तम कर मान, जो किच करै सो प्रभ कै रंग। सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाय होवै सो होए। करणै हार पुछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीत लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए। ओए सुख निधान उन्हों बनाए, आपस को आप दीनो मान। नानक प्रभ जन।

ज्यों महा उद्यान मह मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बाछो धूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे दिल लाइय पुरब लिखे का लिखिया पाइय दुख।

लपत रहो रस लो भी पतंग, राम नाम जप हृदय माहि, नानक पद सेती घर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग दिख्या जंजाल, धन धन कह सब कोय, मुख उज्जल हर दर गह सोय, एह वापार विरला वापार है, नानक ता कह सद बलिहार है, चरण साध के धोए धोए पियो, आप साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइया कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है, अनक बिघन ते साधु रख है, हर गुण गाय अमृत रस चाख है, ओट गही संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार, सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिस का ओह करना जोग, तिस बिंदु सर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी।

पाओ। नानक कै मन इह नराओ, मनसा पूर्ण सरणा जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनगरूप मंगल सब जाकै, सर्व थोक सुनिया है घर ताकै। राज महराज जोग मह जोगे, तप मह तपी सर ग्रस्त मह भोगे। त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया। जाके लीला की नित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे।

प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरह संसार। जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव।

सब पाप मिटावे। अवर सियानप सगली छाड़, किस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूज हो सब पैरा। श्लोक

नानक हर गुण गाओ अष्टपदे। सतगुर सिख की कृपा प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै। गुर कै ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै। आपस को कर कछ न जनावै।

ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सैस सियानप लया न जाइए, नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेख पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुरख हो जाका मंत्र, अमृत दृश्य पेख हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए ना।

वो न पहुंचत प्राणी, अग्न अगोचर प्रभ निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए, अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे, सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमृत सो होय, उस पुरख का नाही कदे मिनास, जाकै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे, तपत माहे ठांड वरताई, अंध भया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, भौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, सित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन, निर्गुण आप सरगुण ही ओही, कला तहार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए।

नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चालै बिन भजन, दिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावन, नानक एह धन सार। अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत विसार हो, चरण कमल हृद मह उतार हो, तरन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गह हो नाम हर वथ, इहो धन संत हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस रख हो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे, जिस धन को चार कुंठ उठताव है, सो धन हर सेवा ते पाव है, जिस सुख को नित बाचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी, अनक उपावे रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्ब निधान में है हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कहनाई, दह दिस धावत।

अपनी भक्ति लाए। अष्टपदे जात जन जात प्रवदान कर कृपा देव हो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नितनीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे दुर्ला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होए दयाल सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिस्तरा जे काल न पाने सो क्यों बिस्तरा जे किया जाने। सो क्यों बिस्तरा जिन सब किच दिया सो क्यों बिस्तरा जे जीवन जिया। सो क्यों बिस्तरा जे अग्न मह रख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है। सो क्यों बिस्तरा जे बिस्ते काढ़ है जन्म जन्म का टूटा गांड है। गुरपुरै तत् है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो हो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए त्रिया संसार बिन भक्ति तन होती चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सकल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तनंतर इही सुआओ। नेत्र हो पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए। भगत जना कह मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत।

पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुणियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राग भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसाद।

आप। जय अचल अशेर अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया। आप को आपै आदेश तेह गुण का नाहीं प्रवेश। जय एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय आपन आप पतियार तह कौन कथा कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आप को आप है पहुंचा। जय आप रचयो प्रपंच अकार त्यों गुण में कीनो विस्थार। पाप पुन तह पई कहावत।

आप कर देख खेल संकोच है तव नानक एक है जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दोहूं पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतुक करह आनंद।

सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतरजामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै नित न आवत काल, अमर भये अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परदास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक घट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मह इसका विश्राम, सुन समाद अनहत कहनाद, कहन न जाई अचर्ज विस्माद, तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जानु सोझी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत, धर्म माहे आकाश पयाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसे आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसन तरमाहे, चार कुंट दह दिशे समाहे, तिसते भिन्न नहीं को ठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमरत मह देख, शशि अर्चूर नक्षत्र मह एक, बाणी प्रभ की सबको बोलै, आप अडोल न कभू डोलै, सर्व कला कर खेल खेल, मोल न पाई।

0: ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक इह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जा का नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म नित कर देख। सास सास सिमरह गोविंद, मन अंतर की उतर चिंद। आस नित त्याग हो त्रंग, संत जना की धूल मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के भर ले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। जित जित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमली कलाल एह रत्न। संत कुमावत होत उधार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महा कै माथे, नान पोदरे तिन कै साथे। तरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव। आल बिंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ धारी, नानक निधि खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान, बहर न होवे आवन जान। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नवनिध, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत्कर वेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख तने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकि गत होए। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संगट, संत कृपा ते जम ते छुट। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रवजीत। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुलभ देह तत्काल उधारे। निर्मल शोभा अमृतता की बाणी, एक नाम मन मय समानी। दुख रोग मन से पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म। सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी। सब ते ऊच ताकि शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नू होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
3: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

एक उत्तम पंथ सुनहौ गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई सतना।

मित्र ना एठ तन रूप हीना किछ साख ना छिन्ना राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरे प्रभु होए सो प्रसन्ना राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना तिसकी तू

0: पढ़ पढ़ पंडित करें विचार।
1: धर्म ग्रंथां दे पाठां नूं लोकां ने संसार दा संदेई बना लिया,
2: ज्ञान ते लिया ही नहीं, ओ बाणी नूं धंधा बना लिया। कईआं ने सारी जिंदगी पाठ ही कीते है धंधा बना के, कईआं ने कराउण दा धंधा बना लिया भी बल्ले बल्ले होए कि चलो कराओ, भी लोकी कहिणगे पाठ नहीं कराया, पाठ कराउण दा धंधा बल्ले बल्ले लई लई, होमे नूं पट्ठे पाण लई लई, कईआं ने पाठ कीते धंधे लई, इत्थे भी पाठ है उत्थे भी पाठ है, कई ते जिहड़े बाबे पंजाह पंजाह पाठ कट्ठे रखदे आ, बहुते पासियां नूं ते करना भी नहीं आउंदा पाठ, इहनूं भी पा दे इहनूं भी पा दे, इन्ने पंजाह पंजाह पाठ अज कित्थे लभदे, पाठी ते पंज लभणे औखे होए पए अज कल, बहुते पाठियां ने ते कम कार करने शुरू करते, पाठ पाठ करने वाला भी हौली हौली छड्डदे जांदे, कई ते धंधा बना लिया, पाठ करना पाठ कराउणा कहिंदे इह ते सिर्फ इक रह गया धंधा। फिर पंगती सुणो दुबारा,
0: वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित कर है विचार।
2: कहते पंडित लोग चीजा के उत्ते, पंडित पंडित का अर्थ सानू भी कहा जा सकता ना, जेडे उसकी व्याख्याकार ने, पंडित धर्म ग्रंथा के व्याख्याकार ने, कोई बंदा वेदा का व्याख्याकार है, कोई शास्त्रा का व्याख्याकार है, कोई गीता की व्याख्या करता है, साडे वर्गा गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या करता, पंडित मतलब व्याख्या करने वाले विचार कर रहे हैं, पर जिंदगी में ज्ञान का दीवा नहीं बाल रहे, बाणी तक पहुंचे है, अर्थ तक भी पहुंच गए, पर वह ज्ञान जेड़ा अपनी जिंदगी लिया नहीं, वह गुर नहीं लिया, वह गुर वो ज्ञान वह लिया ही, इसे करके खाली रहे, धंधा बना लिया लोगों का, पढ़ना सुनना संसार की कार है, वो तो धंधा बन गया। अगे सुन लो शब्द,

अगर नंग जूगी सारे तवे काट के मुड़ी सूर में मदानो पल खट के पावे कुछ होवे हार के नहीं आना सूर में